0: जसई
1: जान के हो
2: ब्रह्मा को
0: ब्रह्मा को
2: करुणा
0: जे रे रे जिले बिनती गराए तसई हे ब्रह्मन जति हो शुभ शुभ सबै सुनि रहन्छु कछु बाकी छैन त साधु सुन अहिले इच्छामय गर्दछु आउला जब यो कली बगतमा प्राणी दुराचार भई

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: अनुरोधक जीव जनवन कार्यालय दोलखा।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: निशान
1: हे फ्रंटियर पे तेरे आया है जवान, दूरबीन से ताके वो अपना निशान।
0: वो तैयब टेल मी हाउ,
1: तैयब

रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्जको रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

नमस्कार रेडियो शैलम सामुदायिक एफएम बैठे थप्लो सात मेगाहर्ज बाटो म बदे प्रसाद सापकोट आज विक्रम संवत 2083 साल अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सन 2026 मे 19 तारीख ज्येष्ठ 5 गते मंगलवार तृतीय

बढ़ो सुस्ताई सुस्ताई साजा भौतिक जगत में नहर नारी ले प्रगति पथ को।

भर में लेगन यो कथा प्रस्तुत करियो। अब यह कथा ले धर्म में धर्म अर्थ में संपत्ति कामनामें इच्छा मुक्ति में गति चार किसिम को फल मिलोस भर अडैया शनिश्चर शांति हुन संसद आदि गिर ग्रह शांति हुन उल्का ब्राह्मरी शांति हुन राहु संकट आदि गिर ग्रह शांति हुन कल्याण होस् मंगल होस् उदय होस् भस्ता किसिम को जो शुभ कामना शुभ आशीर्वाद करते यो श्री जो बृहत नारदीय पुराण पुरुषोत्तम महात्म्य को यो तेस्रो अध्यायले गरिकन यथामति विस्तार गरियो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नारायण ओ श्री पुरुषोत्तम

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: नमस्कार, मेरो बैकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने म झटक प्रसाद तिमल सिन्हा। म दुख केही दुई चारवटा भजन यसो गाउँ भनेर आएको यहाँसम्म। नमस्कार हजुर। जय गाडे सा जय गाडे सा देवा, जय गाडे सा देवा, गौरी माता पार्वती पिता महादेव। हरि हरि सदाई भरी भक्ति गरौ है, हरि हरि सदाई भरी भक्ति गरौ है, यो लोक दुख छोड़ी जन्म सुधारौ है। आरती का जय, राधे राम जी का जय, आरती का जय, राधे राम जी का जय, आरती गरौ प्रभु आती मा तुमारे, यो लोक दुख छोड़ी जन्म सुधारे, यो लोक दुख छोड़ी जन्म सुधारे। जय गाड़े सा जय गाड़े सा देव, गौरी माता पार्वती पितै महादेव। हरि हरि सदै भरि भक्ति गरौ है, हरि हरि हरि हरि सदै भरि भक्ति गरौ है, श्री कृष्ण बलराम सुन्दर वृन्दावन, छोडेर नजाऊ होइ रुन्छ नि मेरो मन, श्री कृष्ण बलराम सुन्दर वृन्दावन,